0: your location for maximum music.
1: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
1: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल एंड दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: तूफान है हर जीत की पहचान है
4: एंड
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: एंड
0: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
4: एंड कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल।

0: 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
2: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: एंड
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: बिगाड़िया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर। Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए राबता 0333-555-0001।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
3: खालिस अज्जा भरोसे मंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: एंड
2: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
6: खूब पहचान लो असरार में जिनसे उल्फत का

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज़।

0: This program was brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Or Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter For Extreme Heat Hire Ek normal AC Is extreme 53 degree heat ka mukabla nahi kar sakta Hire Kar Naya Real T3 Inverter AC Ultra Big Outdoor ke saath जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है Prime Minister's Cloud Program for Startups, AI, SaaS, FinTech, HealthTech. इसके अलावा तमाम startups को smartly scale करने के लिए cloud infrastructure पर $13,500 तक की reimbursement मिल सकती है. Tier 1 के लिए $6,000 और Tier 2 के लिए $7,500 और इसके साथ expert advisory committee की support. Program में apply करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026. Reclaim your cloud spend. अभी apply करें. ignite.org.pk पर
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Or Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter For Extreme Heat Hire

100 on the FM dial. You're locked on to the number one sound, FM 100.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
2: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: इसने कहा था पैसे बचा।

0: Innofrost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
1: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है. मगर अब नहीं, इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं. आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर. एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.

0: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: एंड
0: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: करोड़।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
4: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
5: फिनिक्स लगा और भूल जा।

0: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: FM 100 ड्राइव टाइम।

0: The Big Bear 100.
1: This program was brought to you by
2: Tufan hai ye, har jeet ki pehchan hai ye.
1: And
3: Haier ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And
4: Haier T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Haier.
1: And
5: Cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
1: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाब सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: And alhamdulillah rabbil alameen. Once again, ji haan bilkul, sabse pehle jab aap shukriya ada karna seekh jate hain to hi aap zindagi ko acche tarike se jeena seekh jate hain. We are now in 2026. मौसम की सूरत हाल बाहर थोड़ी सी दबी दबी सी है, और क्या आप भी दबे दबे से हैं या निखरे हैं या बिखरे हैं, संवरे हैं, कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो दैट यू रिकग्नाइज मी, मेरी आवाज तो जानी पहचानी है. कौन लोग मुझे पहचानते हैं, जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम कैसा बन जाए. मैं हूं आपके साथ. Should I announce or not? मैं हूं आपके साथ आरजे इरम शहजादी. जी हाँ जी, आपके साथ मेरा साथ रहने वाला है ठीक दोपहर एक बजे तक के लिए. और इस साथ को बनाइए खूबसूरत, जल्दी से आ जाइए. डोंट मिस एनी मोमेंट्स, डोंट मिस एनी पॉइंट, डोंट मिस एनी मिनट. सो जल्दी से आ जाए, अपने मोबाइल का सर्कल डायल घुमाएं, 3636 पे मैसेज करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे. आपने करना क्या, सिंपल सा तरीका जो हमारे साथ शामिल होने का, आपने क्या करना, आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना है, स्पेस देना है और भेज देना है 3636 पे. There is a little but short break. Time check chalega, uske baad break chalegi aur uske baad hum wapas aayenge. So don't move anywhere, stay tuned. Here you are, Jairam Shehzadi. I'm still with you till 1 o'clock.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: किसने कहा था पैसे बचा?

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

Welcome back. See, so now we're here. Today I'm Shehzadi. Once again, welcome back. We are here with all of you. And today's our program is G-Style Hangover. My program's name, you have heard it. Exactly as usually, I show with you Monday to till Friday, or Monday and Tuesday, 10 a.m. to 1 p.m. And uske ilawa different schedules hain ji hamare. So, जनाब हम आपके साथ रहने वाले हैं ठीक एक बजे तक के लिए. बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है जी आज का. और ओल्ड इज गोल्ड. और आप क्या पसंद करते हैं, न्यू ट्रेंड या ओल्ड इस गोल को? सो जनाब बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है. बहुत जबरदस्त कंपटीशन चलने वाला है इन्फॉर्मेशन के साथ, एंटरटेनमेंट भी. तो डोंट मिस दिस प्रोग्राम बिकॉज वी आर हियर विद ऑल ऑफ यू. FM 100 लोहा रेडियो स्टेशन से लाइव आप मुझे सुन रहे हैं. आज जयराम शहजादी को मैं हूं आपके साथ दोपहर एक बजे तक के लिए. सो साथ साथ आपके साथ बातें चलती रहेंगी, लेकिन आप सबको एंटरटेन करना भी बहुत जरूरी है. सो वी आर गोना मूव ऑन द नेक्स्ट ट्रैक. सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस. जाना कहीं नहीं है, इधर उधर कहीं भी नहीं जाना. एग्जैक्टली बस यहीं पे रहना है, क्योंकि यहां पर रह के ही तो मजा आने वाला है. जी हाँ जी. बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है.

0: वेलकम बैक। जी जनाब, है ये राज रम शहजादी एंड 10:30 की ब्रेक है और इस लिटिल ब्रेक के बाद आपने वापस आना है हमारे साथ। जाना गई नहीं है जी, आई बी राइट हेयर।
1: बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
3: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
3: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

आज हम बात करने जा रहे हैं जी ओल्ड इज गोल्ड के ऊपर, क्योंकि जी नया दौर नई चीजें चल रही है और इसमें अगर हम देखें ओल्ड एज को तो हमारे साथ हर ही उम्र के लोग फिर रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं, नई जनरेशन के जो मसले मसाइल हैं वो क्या हैं, वी वुड लव to discuss all of them. मैं आपके साथ रहूंगी, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: हायर नो क्रॉस आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: वन स्टेशन 100 FM.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.

0: across Pakistan. This is 100 FM.
1: FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। 11 o'clock, here you are, जुरम शहजादी। मैं हूँ आपके साथ बिल्कुल ठीक, जिसे कहते हैं दोपहर 1 बजे तक के लिए, और हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी सारे आ जाइए और हम सब लोग मिल के इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं।
3: You know how I've been thinking about our friendship and how weird it's been. So why don't you just say that you love me?

Okay, Tri, आज हम बात कर रहे हैं old is gold और you are enjoying the present era. बात होने जा रही है आज surprising जो है वो momentums की कि आपको क्या पुराना दौर अच्छा लग रहा है या फिर running दौर ये जो चल रहा है और इस दौर के मसले मसाइल पिछले दौर के मसले मसाइल और पिछले दौर की जो जितनी भी बातें थी जितनी भी यादें जितने भी जैसे कह लीजिए कि उस टाइम की पुरानी चीजें थी वो हमें अब अच्छी क्यों लगती हैं या फिर हमें अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं. सो ये और बहुत कुछ आज इंफॉर्मेशन भी आपके साथ बहुत अथेंटिक किस्म की शेयर करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन आपने सबने हमारे साथ होना है और जो मेरे साथ है वो मुझे जल्दी से बता दे. आप लोग तीन छह पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. हरी अप डोंट वेस्ट द टाइम. हम जा रहे हैं एक सॉन्ग पे वापस आते हैं.

welcome back. You're your Arzuram Shahzadi. I'm your host, not ghost. चलिए जी, मसले मसाइलों के साथ हम लोग चलते ही रहते हैं. बट द थिंग इज दैट कि आपने स्टे ट्यून रहना है, सुनते रहना है, जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है. 11:06 AM आप लोग कहां से हमें सुन रहे हैं जल्दी से बताइए, 3:00 पे. और जी, आज टेम्परेचर क्या है और ये जो मौसम है इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे कि आप लोग सारे इसके बारे में क्या कहते हैं, खाना किस तरह का होना चाहिए और इस मौसम में पानी की मकदार हमें कितनी पीनी चाहिए, इस मौसम में बाहर सोना चाहिए या रूम के अंदर सोना चाहिए. दैट्स ऑल, ये सब बहुत अहम है. और स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान के कितने इलाकों में ये मौसम, जिसे ये मूनसून का मौसम कहा जाता है, ये अफेक्टिव होता है, ये और बहुत सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे हम आपसे. आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी, मैसेज कर सकते हैं लाइव. SMS मैसेज करने का तरीका क्या, आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3:00 पे. ओके जी, प्रोग्राम का साथ साथ आगाज हो चुका है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, कुछ ओपनिंग लाइंस हमारी रह जाती हैं जिसमें हमारी जो है ना वो मोटिवेशन भरी होती है. जो तूने अल्लाह से लो लगाई तो दिल में खौफ जवाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा, रहीम वो है रहम भी उसका, आता भी उसकी करम भी उसका, ये तेरी शोहरत ही कामयाबी तो इसमें तेरा कमाल कैसा ना. जो आहटों की जुबान समझे, अया समझे, पिनहा समझे, क्या ख्याल है, मालिक हर चीज समझता है ना. सो जनाब, जो सब कुछ समझता है फिर वो क्या नहीं है जो वो नहीं समझता.

तो जीत जो उसके करम से है, फिर ये उजलतों का मलाल कैसा और इसमें तेरा कमाल कैसा। क्यों ढूंढता है उसे जहानों की कैद में तू, जो करीब शहरक से भी है तो इसमें हिजरो विसाल कैसा। कि जिसको देखेंगे जन्नती तो कहेंगे जन्नत तो कुछ भी नहीं है, क्या खूबसूरत नजारा होगा। सो जल्दी से मैसेज कीजिए, फिर हम आप सब लोगों को यहां पर शामिल करते जाएंगे। जो जो लोग हमारे साथ मैसेज पे शामिल होते जाएंगे, वी विल अनाउंस हियर। तरीकेकार बहुत आसान है जी, आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, लेटर लिखना है, स्पेस देना और भेज देना है। और आज का टॉपिक है जी, क्या आप लोग प्रेजेंट एरा को पसंद करते हैं या फिर गुजरे हुए दौर को। यस, ये जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, ये जिस फ्यूचर में आप जी रहे हैं, क्या आप फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट में। और पास्ट में जो भी कुछ अच्छा था, आज जो भी कुछ है, वो कैसे है, किस तरह से है, वी शुड बी डिस्कस। हमें इन सारी चीजों को डिस्कस करना चाहिए, हमें अपने जनरेशन को बताना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत गलत हो रही हैं। सो हमारा काम है, हम बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, हम तो देखेंगे और हम समझाएंगे हम तो देखेंगे, है ना, हम बोलेंगे, हम समझाएंगे। सो जनाब, हम खुद भी समझेंगे, हम खुद भी सुनेंगे और खुद भी देखेंगे। यस, सो हरी, आप जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं। वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट ट्रैक विच इज फ्रॉम द पाकिस्तानी मूवी, न्यू मूवी। बुल्ला, यस जी, ये रिलीज हो चुकी है जी। पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश हो रही है डे बाय डे एंड वी आर सो हैप्पी। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहिए, सुनते रहिए स्टे ट्यून्ड एफएम 100।

वेलकम बैक जी जनाब, हम बात कर रहे थे जी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की। यस, आई एम हियर योर आरजे रम शहजादी, और जितने भी लोग हमारे साथ आ गए हैं उन सबको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते जाते हैं जी।

आप सब लोग मैसेज कर सकते हैं जी हमें 3636 पे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3636 पे। कामरान मसूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई एम कामरान, पाकिस्तान, दीना, जेलम, रोहतास, बहुत शुक्रिया जी। सागर अली हमारे साथ थे जी, सलाम मैडम, साहिबा होपफुली यू आर गुड, यस अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार जान है जी, अब्दुल गफूर कैसर हैं, और पठान पटके वाले कश्मोर से पठान पटके वाले हमारे साथ हैं। मोहम्मद इब्राहिम सोमरो साहब थे जी बिटशाह से, मोहम्मद इब्राहिम नोहारी हैं, अवैस भट्टी हैं जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, कुड यू ऑल लिसन टू मी, क्या आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? तब्रेज खान हमारे साथ अभी अभी शामिल हुए हैं जी, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू सी यू ऑल्सो। मोहम्मद शोएब इस जानी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम।

सारे मौसम में हमने एहतियात क्या करनी है, हमने एहतियात ये करनी है कि आप लोग काइंडली इस मौसम के आने से पहले अपने घर की छतों को जरूर देखें, अपने घर दरो दीवार को जरूर देखें, अपने इर्द गिर्द जरूर देखें। और मेरे ख्याल में आज सुबह जब मैं आ रही थी रोड पे चलते हुए तो मेरे हाथ में एक छोटा सा टिश्यू था, तो मैं उसको फेंक रही थी रोड पे, बिल्कुल छोटा। तो मुझे लगा कि मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरे अकेले इतने से टिश्यू से जो है वो गंद फैलेगा नहीं अगर मैं इसे अपने हाथ में ही रख लूं तो। फिर मैंने खुद से सवाल किया और मुझे यही जवाब आया कि यस, अगर आपके होने से फर्क पड़ता है, अगर आप ये समझें कि मेरे ना होने से नहीं फर्क पड़ता, अगर उससे फर्क पड़ता है तो आपके होने से भी फर्क पड़ना चाहिए। और अगर हम इंडिविजुअली ये देखें कि हम सबको सफाई रखनी चाहिए, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये वतन हमारा वतन है, मतलब कुछ ऐसी गलियां हैं जिनसे गुजरना मुहाल है, कुछ ऐसी जगहें हैं जिन जहां हम लोगों ने गंद फेंक फेंक के सारा बुरा हाल किया हुआ है। तो ये सिर्फ हुकाम की नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम उन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से बाज रहें जिससे रोड्स की ब्लॉकेज हो सकती है, जिस पे ये रोड पे नाले जो हैं इनकी ब्लॉकेज हो सकती है। तो हम सबको भी ये फर्ज अदा करना चाहिए, हम सबको अपनी गाड़ी साफ करके बाहर गंद नहीं फेंकना चाहिए, हम सबको अपनी फिक्र करनी नहीं चाहिए, बल्कि बाहर गंद फेंकते हुए ये भी सोचना चाहिए कि यहां से अगर कोई गुजरेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पहले देखा जाए तो इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता था मेरे ख्याल में, और लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और आजकल अफरा तफरी का मौसम चल पड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जनाब थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए ये सोच करके कि जिंदगी से हमने मुस्कुराना ही सीखा है। मुस्कुरा लो अगर आज कहीं से हार गए हो तो, इस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी और की होगी शायद। मुस्कुरा लीजिए अगर दिल टूट गया है तो, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तो तोड़ना पड़ता होगा ना शायद। मुस्कुरा लीजिए अगर है सर पर छत, है बदन पर कपड़ा, है थाली में खाना, तो घर जरूरत से ज्यादा बांट कर जाना, घर साथ मत लेके जाना, बांट देना, क्योंकि तकसीम करना मल्टीप्लाई होके डबल होके ट्रिपल होके आपके पास आता है किसी ना किसी सूरत में। ओके जी, इन सारी बातों का मजा हम किरकिरा नहीं करेंगे, बल्कि इस गाने का मजा जो है हम दुबाला करेंगे, और इस गाने को सुनते हैं और वापस आते हैं। मेरे साथ रहिए, जाना कहीं नहीं है।

वेलकम बैक जी साहब, यू आर जयराम शहजादी, मैं हूँ आपके साथ जी जनाब। दैट्स वंडरफुल जी, एक बहुत जबरदस्त मैसेज किया हमें वसीम इकबाल ने, और मैं यहाँ पर अनाउंस भी करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि जी एक पंजाब में, मतलब बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, बहुत ही अच्छी, मेरे दिल को छू गई जी। पंजाब के गांव में जनाजे की जो एक रस्म थी उसको बदल कर एक नई तारीख रकम की है। बिल्कुल जी, जब एक गरीब शख्स का जो है, जहां जनाजा जो है वो जनाजगाह में पहुंचा, तो सफ़ें दुरुस्त हुई। इमाम साहब ने शुरका से मुखातिब होकर एक दिलसोज ऐलान किया कि ये मैयत हम जिसका जनाजा पढ़ने लगे, अपने घर का वाहिद कफील और सहारा था। सुगवारान में सिर्फ जो है वो एक बेवा और तीन छोटे बच्चे हैं। इद्दत के आयाम में इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लिहाजा जनाजगा के मरकजी दरवाजे पर उन्होंने एक चादर बिछा दी और कहा कि आप जितने भी लोग यहां पर शरीक हैं, वो 10 से लेके 100 या लाख, जितनी भी आपकी तौफीक है, इस चादर पर रख दीजिए, ताकि वो लोग जो पीछे रह गए हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है कि मैं कह रही हूं कि जो भी साहिब तौफीक बगैर किसी दिखावे के अल्लाह की रजा के लिए एक रुपए से लेकर अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी रकम दे सकता है वो वहां डाल दे। जनाजे के बाद जब चद्दर से जो है वो रकम इकट्ठी की गई तो वो तकरीबन भी 1 लाख से ज्यादा थी, किसी के 10 रुपए, किसी के 100 रुपए। लेकिन इस मुश्तरका हमदर्दी ने यतीम बच्चों के लिए ना कई महीनों का मौशी सुकून फराहम कर दिया। ताजियत सिर्फ हाथ उठाकर दुआ करने का नाम नहीं है, बल्कि दुख की घड़ी में अमली सहारा बनने का नाम है। दैट्स वंडरफुल जी, स्पीचलेस, बहुत खूबसूरत। अगर किसी ने सिर्फ ये तहरीर ही लिखी तो बहुत खूबसूरत है, मैं कह रही हूं इस पर अमल होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, शाद शाद हो गया। और जी, जन्नत का रास्ता कह रहे हैं जी बहुत आसान है, खिदमत में छुपा हुआ है। बिल्कुल जी, खल्के खुदा की खिदमत में छुपा हुआ है। अगर कोई पौधा लगाए, हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लम का फरमान है कि कोई पौधा लगाए और इससे किसी इंसान या जानवर परिंदे को फायदा पहुंचे, तो लगाने वाले को भी इसका सवाल मिलता रहता है। जन्नत का आसान रास्ता तो यही है। बिल्कुल जी, और हम सबको इस पर अमल भी करना चाहिए। कमल नाज हमारे साथ आ गई, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं?

तो जनाब दिलों में जो है ना वो रहम आना चाहिए, और वो लोग जो इस मिंबर पे बैठते हैं, यानी कि ये बैठना बोलना और लोग उनको सुनते हैं, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आयद होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सबको मिल के ये जिम्मेदारी जो है ना वो अदा करनी चाहिए, एक दूसरे को बताते रहना चाहिए, एक दूसरे को आगाह करते रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक की जिम्मेदारी है तो एक पे ही रहे। ओके जनाब, लेट्स मूव ऑन।

करते हैं अगले सॉन्ग की जाने. वो किसी बात हो रही थी, मुस्कुरा लीजिए. अगर दिल कहीं से टूट गया है तो किसी का जोड़ने के लिए किसी का तो तोड़ना पड़ता होगा ना शायद. और जी मुस्कुरा लीजिए. अगर है सर पे छत, है थाली में खाना, अगर जरूरत से ज्यादा है तो घर बांट कर जाना. और मुस्कुरा लीजिए ये सोचकर, ये कहकर खुद से कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा है.

welcome back, this is Nob. You were listening Teri Asim Azhar and Momina hai na? Yes, she is the best and he is also the best. Aur dekha jaye to aane wale legends mein hai ye. ओके जी, हम लोग आपके साथ हैं दोपहर 1 बजे तक के लिए. जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, बिकॉज प्रोग्राम जो है वो गोइंग ऑन है एंड रॉक ऑन है. आप सब लोग अपनी जो है वो मसाले बातों की, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे की बातें जो होती हैं वो हमें एक दूसरे को आगे से आगे लेके चलती हैं. यस, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फिर बताएंगे आपके क्या थॉट्स हैं. बात हो रही है जी ओल्ड इज गोल्ड की, क्या पुरानी चीजें हैं आज भी आपको मजा करती हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है, पुरानी गाड़ी, पुरानी जीन्स, पुराना जीप,

Okay, so here go Arzuram Shehzadi, you're listening to FM 100 se live. बात हो रही है जूल इज गोल्ड की और इसके साथ साथ ये जो मौसम चल रहा है हॉट एंड ह्यूमिडिटी जो इसके अंदर ह्यूमिडेट हो रहा है सारा हमारा मौसम जो है वो ह्यूमिडिटी तो यही है कि आप लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रखें. ह्यूमिडिटी का नाम मैंने इसीलिए लिया कि हॉट ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडेट अगर इंसानियत हमारे अंदर होगी तो मेरे ख्याल में हम इस मौसम को इस मुल्क को आगे लेके चल सकेंगे. हम अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी एफर्ट्स तो पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम दूसरे के मुंह को देखते रहें. और इस हॉट और ह्यूमिड रेनी मौसम में मॉनसून सीजन जो चल रहा है आपको जो है ना लाइट वेट खाना चाहिए. प्लीज इतने पकवान मत बनाएं, ना खवातीन को परेशान करें, ना बहनों को, ना माओं को. प्लीज खुद भी उठ के काम करें साथ. डाइजेस्टेबल फूड्स होने चाहिए, हाइड्रेट फ्रूट्स होने चाहिए. वेल वही बात आ गई कि आप क्या करें, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें हैवी ऑयली मील्स जो होते हैं इनसे. और इसमें जो आपने क्या करना है, डाइजेशन जो है ना वो बड़ी स्लो हो जाती है. आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो मौसम बाहर का नहीं है ना सही, तो फिर अंदर का भी जो है ना वो बीच में किचमिच बच जाती है जी. ऐसा ही है जी. सो मेकिंग इट एसेंशियल टू चूज फूड्स दैट कीप यू कूल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फूड बोर्न इलनेस. जी हाँ जी, आपको कभी कभी वो भी हो जाता है, स्टमक जो है आपका हैवी हो जाता है और इस मौसम में नहीं खाया पिया जाता, तो इसमें जो है वो आप अपनी जैसे कहते हैं ना रूटीन को ऐसा रखें. मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, वो लिसनर जो मुझे इस टाइम सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगी, ये जो अर्के गुलाब है ना इसमें अगर आप थोड़ा सा काला नमक डालकर मॉर्निंग में खाली पेट पी लें तो मैं कहती हूं कि आप लोगों की जो डाइजेशन है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो भी हल हो जाएंगे. लेकिन इसके लिए आपको ये रूटीन अपनानी होगी, खाली पेट के आपको करना होगा. और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड के ऊपर तो हम सॉन्ग पे जा रहे हैं, पुराने सॉन्ग पे, पुरानी जीन्स और गिटार.

अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

वेलकम बैक, पुरानी जीन्स और गिटार। हाँ भाई, मोहल्ले की वो दीवार जिसे कूद के फैलांग के आप जाते थे। पुरानी जीन्स और गिटार, पुराने टाइम में बहुत अच्छा एंजॉय किया मैंने, बहुत मजा आया, बहुत जो है जिसे कहते हैं ना, बड़े मजे की थी सारी चीजें। कि पुराने टाइम में हम लोग नानों के यहाँ जाते थे, वो टाइम बहुत मजे का था। और अब का टाइम जो है, अगर देखा जाए, देयर इज नो वन, कुछ भी नजर नहीं आता, तो उस टाइम में थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है। आई एम गुड, आप सब कैसे हैं जी? राबिया वैस जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मोशी मोशी कायनात सा विद अस, She is with us. Moshi Moshi, konnichiwa. जी, हमारे साथ बड़ी क्यूट सी मेरी क्लासमेट भी हैं, मेरी प्यारी सी दोस्त हैं छोटी सी कायनात सा हमारे साथ मौजूद हैं। FM 100 की जानिब से आपको अस्सलामु अलैकुम, and she said that I love your voice. So charming, thank you so very much Kanat san, you are so charming, you are so talented. I wish you that you grow more and more in your life, you get success in your life. Aur arigato gozaimasu. Okay ji, arigato kehte hain Japanese mein, kyunki mujhe shauk hai kuch languages seekhne ka, so I'm gonna learning something new.

ओके जी, बात हम कर रहे हैं कि इस मौसम में आपने खाना पीना भी किया है और प्लीज ऐसी चीजें मत खाएं जिससे आपको आपका स्टमक बड़ा हैवी फील करे। इस मौसम में कुछ ऐसा भी मत बेक करके हैवी वाला खाएं जिससे आपको स्टमक आपका जो है वो पल्पी पल्पी सा हो जाए। सो हाइड्रेटिंग फ्रूट्स भी खाने चाहिए आपको, लेमन जूस भी पीना चाहिए। और कुछ लोग जस्ट लाइक मी, मेरा तो गला ही बहुत सेंसिटिव है, मैं तो इतना सा भी कुछ खा लूँ तो मुझे जो है ना वो गले में दर्द। और हाँ, अच्छा आजकल एक बड़ा मसला हो रहा है, आप सबके साथ हो रहा है, कभी आप एसी में जा रहे हैं, कभी एसी से बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। जी हाँ बिल्कुल जी, एक्टिविटी तो होती है, खाना भी बनाना होता है, अंदर बाहर जाना भी होता है, तो अंदर बाहर आने जाने से भी आपको पता है क्या होता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपको एसी को जो है ना वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर भी रखना चाहिए। एक्स्ट्रा जो ठंडा कर लेते हैं, जिन्हें लगता है जी हमें बहुत ही गर्मी लगती है, एक्स्ट्रा ठंड नहीं मचानी चाहिए, एसी को नॉर्मल रखना चाहिए ताकि जो आपकी सेहत है वो सही रहे, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा और आपको स्नीजिंग नहीं होगी, छींकें आएंगी, एलर्जी हो जाएगी, तो माइंड जो है ना एकदम से माइंड को झटका सा लगता है। और चूज करें लाइट वेट फूड फॉर एनर्जी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग हॉट वेदर। हाँ याद रखिए कि जो जुलाई और अगस्त में, अब हर दिन हर टाइम जैसे कहते हैं ना, हर साल ये मौसम सीजन आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए इस मौसम में हमें ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अब जुलाई में स्टार्ट हुआ है आई थिंक, सो इफ आई एम राइट सो टेल मी कि जुलाई में ये मॉनसून का महीना स्टार्ट हो गया, मॉनसून का जो बारिशों का सिलसिला है। और इसमें जो है ना, वैसे बारिशों में एक मजे की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, फूल पौधे बहुत बढ़ते हैं, इतनी ग्रो करते हैं, इतनी घास भी बड़ी ग्रो करती है। वो दरख्त जो साला साल से मैं जब भी कहीं जाती आती हूँ, स्पेशली लाहौर में, जब ये दरख्त बेचारे सूख जाते हैं ना, मुझे इनको देख के बहुत दुख सा महसूस होता है। और फिर मैं कहती हूँ कि इनको पानी आने वाला, लगने वाला है जी, तो रब्बे कायनात का जो लगाया हुआ पानी उसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना, तो फिर इनका भी तो एक मौसम होता है ना। सो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, इस बात की खुशी को लेके मैं इतना खुश होती हूँ कि मुझे बाकी अपने सारे गम भूल जाते हैं। ऐसा है कि अगर आप पार्क्स में जाएंगे तो वहां पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत कम होगा। देखिए जब बहुत ज्यादा फ्लो में पानी लगेगा दरख्तों को, जमीन की जो जमीन के अंदर जो दरख्तों की जड़ें होती हैं, वहां से जो है ना, जिसे कहते हैं जी वो सारा ऑक्सीजन उनका भी बाहर निकल रहा होता है, वो अपनी गैस खारिज कर रहे होते हैं, और उसके अंदर आप सांस लें तो सारी सी बात है, और वहां बैठ के आप खाना खाएं, इट्स टू मच हार्ड मेरे ख्याल में। लेकिन मैं देखती हूँ लोग बहुत जो है ना वो ब्लंट किस्म के कपड़े पहन के खाने लेके चल रहे होते हैं, वो समझते हैं शायद हमें घरों में जो है ना हब्स हो रही है, गर्मी लग रही है, हम बाहर जाएंगे तो कुछ अच्छा होगा। नहीं, हाँ अगर आप हाइट पे जाते हैं तो हवा जरूर चलती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको एक जगह पे बैठ के गर्मी सी लग रही है तो आप अपनी जगह चेंज करें, नॉट गो टू द पार्क फॉर द फुल टाइम और फॉर द पिकनिक टाइम आई थिंक सो। मौसम अच्छा हो तो आप लोग जा सकते हैं। लाइट ग्रेन्स खाएं, दलिया हो गया, ठीक है, खिचड़ी हो गई, ये भी आप खा सकते हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल भी ले सकते हैं हम, जैसे लौकी हो गया, टिंडा हो गया, तोरी एंड कद्दू, ये भी ठंडा होता है, ये बहुत आपके लिए अच्छा होता है। ओके जी, मैसेजेस आ रहे हैं जी। एडी उमर फारूक, हाय हाय। इब्राहिम केलारी, मोहम्मद इब्राहिम केलारी, बस्ती यासर खान, डेरा गाजी खान से शामिल प्रोग्राम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। तो आज बात हो रही है ओल्ड इज गोल्ड, क्या आप लोगों को पुराना कुछ याद आ रहा है? बस जनरेशन के अगर हम देखें मसले मसाइल, तो पुराने डेज बहुत याद आ रहे हैं कि जब हमारे माँ बाप हमें डांटा करते थे तो हम किस तरह से, मतलब इतनी तो हमारे अंदर ब्लंट किस्म की चीजें नहीं थी जितनी अब हमें देखने को मिल रही हैं। जनरेशन टू जनरेशन फर्क होता है, लेकिन इस जनरेशन का तो जैसे वो प्लस्तर ही नहीं हो गया, जैसे कोई, जैसे कहते हैं कि रंदा फेर देना पंजाबी है, इस तरह से हो रहा है भाई। देखें, हम सबको हर दौर में जो है वो मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन इन मसले मसाइल को अगर हम सर पे सवार कर लें तो मेरे ख्याल में हम हल नहीं कर सकते। एवरी मदर इज वरिड इन दिस एरा ना, हर पेरेंट
जो है ना वो इस एरा में परेशान है. हम लोग मूव करना चाहते हैं हाई, जिसे कहते हैं हाई टू हाई ना. लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने हर क्लास में बैठ के देखा है, हर ही क्लास में. सो जितने मसले मसाइल हम अपने बढ़ाते जाएं उतने ही बढ़ते जाते हैं. जितना हम ये कहें कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जितना हम चीज़ों को ऐड ऑन करते जाते हैं लाइफ में, मसले मसाइल भी उतने ही बढ़ते जाते हैं. तो पुराने दौर में अगर चीज़ें कम थी ना, ख्वाहिशें महदूद थी, वसाइल भी कम थे, लेकिन खुशियाँ बहुत थी. मानिए बीमारियाँ कम थी. खुशियां ज्यादा थी, सुकून ज्यादा था. Are you gonna agree with me? मेरे साथ आप एग्री करते हैं या नहीं मुझे जल्दी से बताइए. और आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है हरी, अब जल्दी से 3-6-3-6 पे आपकी राय मुझे चाहिए. जल्दी से मुझे राय दीजिए कि आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए.

0: ओके जी, पीपल से दैट कि हम लोग आपको सुन रहे हैं. अगर आप सुन रहे हैं तो आप बोल क्यों नहीं रहे, बताएं ना आपको पुराना दौर पसंद था या अब का, और पुराने दौर के क्या मसले मसाइल थे, क्या मसले मसाइल थे या पुराने दौर में सारी खुशियां खुशियां थी. मुझे बताइए ना, मुझे गलत साबित कीजिए. आप अपने जिसे कहते हैं ना अल्फाजाज, आप अपनी दलील दीजिए. मुझे इस बात में आपकी दलील चाहिए कि क्या मैं सही कह रही हूं या गलत. अभी ये टाइम हो गया जी एक छोटे से टाइम चेक ब्रेक का. आई विल बी राइट बैक. जाना गई नहीं है, सुनते रहिए एफएम 100. है योर आरजे रमशेजारी.
1: इट्स 12:15 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो एंड शॉबे जर्मनी, प्राउडली सर्विंग पाकिस्तान विद द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी फॉर 74 रिमार्केबल ईयर्स.

वेलकम बैक जी जनाब, क्योंकि राजे रम शहजादी और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, कमलनाथ कहती हैं जी, वैसे इरम दौर चाहे पुराना हो या नया, बस हर दौर में लोग अच्छे मिल जाएं। हाँ, बहुत काम की बात की है, बहुत काम की, दैट्स वंडरफुल। मैं कह रही हूँ इस पे हमें क्लैपिंग करनी चाहिए। गर्मी नाल पिघल गए और प्लैकिंग हो गई क्लैपिंग की जगह, लेकिन अच्छी बात है। वैसे मजा आता है ना ऐसी चीजों में भी, कि जब आप ऑफिशियली कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। ओके जी, वी विल प्ले नेक्स्ट सॉन्ग, बट बिफोर हम कुछ थोड़ी सी चिटचट करेंगे। बातें हो रही हैं मौसम के ऊपर और साथ जो है ना वो पुरानी चीजों के ऊपर बात हो रही है। अगर हम कदर नहीं ना करते, मेरे ख्याल में वो नई चीज हो, पुरानी हो, तो वो कुछ भी नहीं। तब्रेज़ खान का कहना है जी, मुझे तो पुराना दौर पसंद है। क्यों तब्रेज़ खान, आपको पुराना दौर क्यों पसंद है, कुछ बताएं तो सही। और आपको नए दौर से क्या शिकवे शिकायतें हैं, और आप कैसा देख रहे हैं इस दौर में क्या चल रहा है? इस दौर में आपको क्या लगता है कि क्या है, क्या होना नहीं चाहिए था, मतलब ये सारी चीजें, और किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? दिस एंड ऑल दैट हमें कदर करनी चाहिए। अगर हमारे कुछ पुराने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं तो

ओके जी, जल्दी से आ जाए, प्रोग्राम का जो टाइम है वो बहुत थोड़ा रह गया। शिकायत तो किसी दौर से भी नहीं है और महंगाई बड़ी हो गई है जी, तरबेज खान का कहना है। हाँ जी, एक महबूब राजी करना बहुत औखा हो गया है जी। बिल्कुल सही आख्या जी तुसी, और मैं थोड़ी इस गल नाल पूरा पूरा इतफाक करनी हूं।

0: बिल्कुल जी, नया दौर, नए चैलेंज, नए पीपल, नए लोग, नई बातें, तो टाइम तो गुजरना है और दौर भी हमें अच्छे तरीके से इसको लेके चलना है। मसले मसाइल होते हैं, लेकिन असल इंसान तो वही है जो मसले मसाइल को हल करके आगे चले। एक दिन हम बैठ के रो लेते हैं क्योंकि दिल के अंदर सारी चीजें जमा हो जाती हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। बिकॉज हमारा एक माइंड सेट होता है ना जिसके मुताबिक हम समझ रहे होते हैं, हमारी बाउंड्रीज होती हैं, हमने अपनी बाउंड्रीज बना ली होती हैं, अपनी अपने दिमाग में सोच सोच के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। मतलब इन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग जी रहे होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी खुद से, जो है ना वो अपने आप ही हमारी जो है ना उम्मीदें लग जाती हैं किसी ना किसी से और खुद से, बल्कि हम खुद को जो है ना वो बहुत आगे ले जाते हैं। वो चाहे किसी की लाइफ है, किसी का कुछ भी है। सो मेरे ख्याल में हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। और दौर जैसा भी चल रहा है उसमें चीजों को चैलेंज, जो आपके पास रिश्ते हैं, जो आपके जो बहुत ही जिसे कह लें कि जी बहुत यूनिक हैं, बहुत अनमोल हैं, उन रिश्तों को हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, वो लोग जो हमें सुन रहे हैं इस टाइम, उन सबको कहना चाहेंगे जी जो दौर गुजर गया उसमें जो भी था वो बहुत खूबसूरत था और जो है वो भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। सो डोंट ब्रोकन योर सेल्फ, आप लोग अपने आप को मत तोड़ें और खुद एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें। यस, द मेन थिंग इज दैट कि आप एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें कि तुमने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मेरे ख्याल में जितना हम खामोश रहेंगे, जितना कम हम चीजों को सोचेंगे, जितनी कम तवक्कुआत लगाएंगे, मेरे ख्याल में आई थिंक सो दैट कि वो ज्यादा अच्छी है। ऐसा ही है ना, क्योंकि देखिए अल्लाह से भी हमने जो है ना, अल्लाह के साथ भी हमारा कोई रिलेशन है और अल्लाह की सिफात में से जो एक सिफत है जिसमें से मुझे बहुत खौफ आता है, यानी बेनियाजी। जब इसकी जात का बंदे से मुंह मोड़ा जाता है ना, जब वो मुंह मोड़ लेता है, फिर चाहे हम झूठ बोलें, बस जुबानी करें, नमाज छोड़ दें, किसी का दिल दुखाएं, गुनाहों में मुबतला हो जाएं या फाहशी देखें, अपनी गलती का एहसास ही ना रहे, दिल में गिल्ट ही ना हो, मुझे इस बात से खौफ आता है कि अल्लाह अपनी बेनियाजी में मुझे मेरे हाल पर ही ना छोड़ दे। तो यकीन करें, लोग भी आपके जो रिश्ते हैं आपके साथ हैं, वो जो पुराने लोग, वो भी यही सोचते हैं कि हम इनको इनके हाल पे छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाहों और गलतियों पे दिल बेचैन ही ना हो, अल्लाह की रजा जो है वो हमारे साथ शामिल हाल होनी चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरा अपना मानना ये है। और अगर हम ये देखते हैं, उन रिश्तों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारे हाल में छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करने देना चाहिए। जहां हम गलत हैं, रुक के अपनी गलती का एहसास करें और माफी मांग लें और चीजें ठीक कर लें। आज से ठीक 100 साल बाद जब 2021-2026 आएगा ना, तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, बाकी जिसको अल्लाह चाहे, हमारी कब्रें अनजान हिस्सों में खो चुकी होंगी। और बहुत आरजी ठिकाना है जी, ये दौलत शोहरत बाकी रहने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ हमारे अमाल नियतें होंगी और वो दुआएं होंगी जो किसी के दिल से निकलेंगी। इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे आप कितने अच्छे और दूसरा कितना ही गलत और गंदा आपकी नजर में क्यों नहीं है, क्योंकि क्या पता कल हम हो ना हो, मगर हमारी अच्छाई किसी के लिए दुआ बन जाए। ये मैं खुद को भी कहती हूँ, हर लम्हा आप अपने आप को बदल सकते हैं, हर लम्हा आप अपनी सोच में नया जिसे कहते हैं ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अपनी जहनी सुकून के लिए जरूरी है कि हर चीज को मुख्तसर करना सीखें। मौसम जैसा चल रहा है, मौसम के ऊपर बात हो रही है, अल्फाज, ख्वाहिशात, एहसासात और लोग, हर चीज को मुख्तसर करना सीख लें जी। जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना मुख्तसर करना है तो रिश्तों को ही करना है, इसमें सब कुछ है। हमेशा दिखावा करें कि आप ठीक हैं, चाहे जिंदगी आपको कितनी मुश्किल में डाले, राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज्यादा खूबसूरती इसी बात में है कि दूसरों का जो रहम है वो आप पे आए, आप बताएं, आपको लगे जी, आपकी सिंपैथी आपको दें बिला वजह की। तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना खामोशी से अपनी जिस भी मंजिल में जाना चाहते हैं उसको खामोशी से दिखावा करके कहें जी हाँ बिल्कुल इट्स ओके। और मेरे ख्याल में हर शख्स जो है ना वो खुश रहने के लिए परेशान है। इज इट ट्रू और नॉट? हर बंदा चाहता है कि हम खुश रहें, है ना। تو جناب کم از کم ایک انسان ہو جس سے آپ بات کر سکیں اور آپ کو بالکل ایسا لگے کہ جیسے آپ خود سے بات کر رہے ہیں نا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کم از کم کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے لائف میں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ آپ خود سے بات کر رہے ہیں. اور یہ پرسن لائف میں ڈھونڈنا میرے خیال میں بہت مشکل ہو گیا, لیکن ناممکن نہیں ہے. اوکے جی, بریک کا ٹائم ہے, 12:30 کی بریک ہے. آئی ول بی رائٹ بیک.
1: کول کنگ. باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
4: سیوان سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, برائے رابطہ 0333555001.

वेलकम बैक। और बात हम कर रहे हैं आज मौसम की भी कि मौसम मानसून का है और हम जो है ना वो बारिशें हो रही हैं। बारिशों में मैंने बड़ी आज ट्रैवल करते हुए देखा कि बड़ी जगहों पर पानी खड़ा हुआ था। तो आप सबसे गुजारिश है जी, मैं तो सफाई करना शुरू हो जाती हूँ, वो चाहे मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊं चाहे कुछ भी व्हाटसोएवर, मैं अपना टेबल भी साफ कर लेती हूँ इससे पहले कि कोई बहरा आए जी, कोई मेड आए वहां पर, कोई भी वहां पर आए और साफ करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, व्हाटएवर। स्ट्रीट फूड जो है ना, इसको मत खाएं आजकल प्लीज, क्योंकि पानी पूरी जब आप खाते हैं, पानी पूरी होती है और क्या क्या होती है, पानी पूरी होती है, गल पूरी होती है, पर नींद पूरी नहीं होती है ना। आजकल मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही और इस मौसम की वजह से ही कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है दिमाग का कि एसी में जाते हैं तो ठंडक, बाहर आते हैं तो हॉट गर्मी लगती है, ऐसे अंदर जाते हैं सब कहते हैं जन्नत, हाय हाय जन्नत मिल गई, और बाहर आते हैं तो कहते हैं दोजख बन गया। तो ये हमने खुद बनाया है। मुझे बड़ी खूबसूरत, मेरे एक समझ लें बहुत अच्छे मोहसिन की तरह समझ लें जी, बहुत खूबसूरत प्यारा सा रिश्ता है। कभी कभार जब आपकी सालों किसी से बात ना हो और कभी कभार किसी से बात हो तो वो रिश्ता मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत होता है, आई थिंक सो, जिसमें सिर्फ जिसे कहते हैं बिना लॉस के, बिना किसी लालच के आप बात कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो रिश्ता जो होता है ना वो बिना किसी लालच के होता है और उस रिश्ते में जो है ना बहुत खूबसूरती होती है। तो एक दिन मैं उनसे बात करते हुए मैंने पूछा कि ये गर्मी के मौसम से आज से कई सालों पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये मौसम हमने अपने मुताबिक तो किए लेकिन हमने नेचर को भुला दिया। मतलब सर्दियों में हम वो गीजर चला के गर्म बहुत पानी कर लेते हैं और अंदर जो है वो अंदर भी एसियों में, या हम वो चला लेते हैं गैस वाले, अंदर क्या बोलते हैं उनको, हीटर चला लेते हैं, गर्मियों में हम एसी चला लेते हैं, तो हम नेचर के करीब कहाँ पे हैं। ओएमजी, हम आपसे नाराज हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐलान कहते हैं हम आपसे नाराज हैं। वो लोग जो आज बहुत लेट आए हैं उनसे हम बहुत लेट वाला नाराज हैं, हम जल्दी मान देंगे नहीं। इससे पहले कि आप लोग जो है ना वो हमारे साथ कोई मीठे मक्खन लगाएं, तो हम आपको बता दें इस मौसम में मक्खन भी लगाना अच्छी बात नहीं है भैया, खुद ही फिसल जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल जी, आपने जो है वो स्टीम चीजें खानी है, ठीक है, और कच्ची चीजें मत खाएं, उसमें सुंडियां वगैरह भी हो सकती है ना। जब आप सब्जी लेते हैं उसको अच्छे से वॉश करें, और सब्जी वालों की तो जिम्मेदारी नहीं होती, बेचारे वो तो नहीं देखते, ठीक है, और सब्जी जब आप लेते हैं उसको अच्छे से वॉश करें, हो सके तो नीम गर्म पानी, वैसे आजकल उफ पानी भी बहुत ही गर्म उबलता हुआ, नहाने के लिए दिल नहीं चाहता, लेकिन बार बार नहाना भी बहुत जरूरी है मौसम, इस मौसम में नहाएं बार बार, और आपको एक्नी ना हो, इसके लिए जो है ना वो थोड़ी सी चीजें मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे खुद का ये प्रॉब्लम है, पिंपल्स और एक्नी, एंड यू कैन सी हियर। सो फूड जो है वो आपको नहीं खाने चाहिए, वो जैसे कि बाहर रोड साइड पे, जहां पर हाइजीन ना हो, जहां पर साफ सुथरा ना हो, भाई खा के ये ना हो आपका दिल बेकरार हो रहा और आप कहें आए गोलगप्पे खाने चलते हैं जी, आज हम ये करारी चीज खाने का मन कर रहा है, अब करारी चीज खा के आप बेकरार हो जाएं, आपका जो सिस्टम है स्टमक है वो अपसेट हो जाए, तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट गुड ना। सो खाएं तो अच्छी जगह से खाएं और चबा चबा कर खाएं और इतना उसको च्यू करें और इतना ही खाएं जितना आप अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं। और जी कह रहे हैं जी लीफ ग्रीन्स रॉ, यानी स्पेनिश, जैसे गैबेज हो गया, लेटस इजीली ट्रैप हो जाते हैं, मर्ड एंड बैक्टीरिया इसमें आते हैं इन दिस वेट वेदर, इस गीले मौसम में जो है वो आप इन सारी चीजों को मत खाएं जिससे आपका जो है वो खराब हो सकता है। ग्रीन लीफ यानी पालक जो है इसमें बहुत ग्रीन कलर की अक्सर जो है ना वो देखी जाती है, उनके साथ ही चिपकी होती हैं इनके कीड़े जिसे कहा जाता है। और फ्राइड समोसे, पकोड़े, पराठाज, ये जो है ना एसिडिटी पैदा करते हैं, ब्लॉटिंग हो जाती है आपकी, आपके स्टमक के अंदर ब्लॉट, जिसे कहते हैं ना मैदा बड़ा पारी पारी फील हो रहा है, हाँ ऐसा सारा कुछ हो जाता है।
اور سی فوڈ جو ہے نا وہ بھی میرے خیال میں فش پرانز جو ہے وہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں اس سیزن میں اور اسپوائل ویری کوئکلی, اور یہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ اسپوائل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس موسم میں پانی بھی جو ہے نا گدلا ہو جاتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ مچھلیاں بیچاری جو ہمارے پارکس ہیں ان میں پانی جو ہے یہ لوگ کبھی نکالتے ہی نہیں ہیں یار, مطلب ہائیجین صفائی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اگر اس موسم کی میں نے بات کی, ہاٹ ہے ہیومڈ ہے, تو اس میں ہیومینٹی کی بھی بات کی ہے میں نے کہ ہم ہیومن بینگ ہیومن وی آر ناٹ گڈ ہیومن بینگ. میرے خیال میں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو اچھا بنا سکیں. اوکے جی, کوئک ہوم ریسیپیز بنائیں جس سے آپ کا امیون بوسٹ ہو, ڈرنکس ہو سکتے ہیں اور بھی بہت اچھے سے آئیڈیا ہیں کہ جو ہم بنا سکتے ہیں گھر میں. اور ہاں, پودینے کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے. اور بات اولڈ از گولڈ کی بھی ہو رہی تھی,

नान टिक्का एने गर्म मौसम विच नान खान तो अवॉइड करो. वो के मैं खादा कल लेकिन थोड़ा जा खादा और शाम तक कुछ नहीं खादा फिर.

जल्दी से बताएं आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है. ओनली 5-10 minutes आर लेफ्ट बिकॉज दोपहर 1 बजे तक मेरा आपका साथ होता है. तो फिर ये साथ खत्म हो इससे पहले आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि ये साल खत्म हो रहा है, आप लोगों को मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है. थ्रू आउट द एयर आपको कैसा लगा, मेरे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कैसी रही, मेरी स्पीकिंग, मेरा जितना भी जो भी है व्हाट्स एवर, और कहीं गलतियां भी होती हैं मुझे बताएं, सुधारें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप सब लोग मेरे जो हैं वो खैरख्वाह हैं. मुझे यहाँ भी कोई कुछ कहे मुझे अच्छा लगता है. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी व्हेन एनीवन Noticed me, my mistakes. हमारे हाथ में जब कोई जाम आया है तो लब पे कितने ही प्यासों का नाम आया है. कहाँ का नूर यहाँ रात हो गई गहरी, मेरा चराग अंधेरों के काम आया है. ये क्या गजब है जो कल तक सितम रसीदा थे, सितम घरों में अब इनका भी नाम आया है. तमाम उम्र कटे इसकी जस्तजू करते, बड़े दिनों में ये तर्ज़ कलाम आया है. पढ़ूं तो राख बनूं, मुड़ चलूं तो पत्थर हो जाऊं. सफर में शौक के नाजुक मुकाम आया है. खबर भी है मेरे गुलशन के लाला और गुल को, मेरा लहू भी बहारों के काम आया है. वाह वाह. सो जनाब, जाते जाते के कुछ चीजें जो आप सब लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ खूबसूरत लाइंस हैं. बढ़ूं तो राख बनूं, मुड़ चलूं तो पत्थर हो जाऊं, सफर में शौक के नाजुक मुकाम आया है. खबर भी है मेरे गुलशन के लाला और गुल को, मेरा लहू भी बहारों के काम आया है. वो सर फिरे जो नगादारी जनू में रहे, सरवर इनमें हमारा भी नाम आया है. आले आले अहमद सरवर.

वेलकम बैक जी जनाब, योर आरजे रमशेद सागी और वॉल्यूम था बिल्कुल हाई पे और आपने ट्यून किया हुआ FM 100. इफ यू आर ट्रेवलिंग देन मैसेज मी, इफ यू लिसनिंग टू मी, आपका सफर बहुत साल और आसान गुजरे और आपके लिए ढेरों दुआएं हैं जी. आपकी मंजिल जो है वो कामयाबी की हो और आप कभी भी हार ना माने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आगे आगे बढ़ें और जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेके जाएं. जो आप सोचते हैं कहते हैं, आपके साथ बैठे बच्चे भी अगर आपको कुछ कह रहे हैं, अगर आपके दिल में यकीन हो ना तो फिर यकीन करें कि वो सब कुछ हो जाता है. बड़ी दफा मैंने देखा है कि बच्चे कोई डिमांड कर रहे होते हो माँ बाबा से और माँ बाबा जो है ना वो कह रहे होते हैं हाँ हाँ बेटा हम ये कर लेंगे, ये ले देंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक ना उम्मीदी भी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए. आई थॉट ओनली बाय मायसेल्फ. और बहुत सी बातें जी, इस मौसम में बहुत सी चीज़ों से आपको जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए और ऐसी बातें जिस बात से मूनसून में और मौसम खराब हो जाए, ऐसी बातों से मेरे ख्याल में हमें और भी ज्यादा अवॉइड करना चाहिए.

कांटों में जो फूल खिला है, कांटों में जो फूल खिला है, जब देखो हंसता रहता है, डाली पर एक पीला पत्ता है, जाने क्या क्या कहता है। डाली पर एक पीला पत्ता है, जाने क्या गाता रहता है, क्या गिनता रहता है। सुनते हैं एक हवा का झोंका, एक खुशबू को लेके भागा है, बहते पानी पर दीवाना किसी को खत लिखता रहता है। सोने चांदी की जगमग ने सबको अंधा कर रखा है, एक चिड़िया के आ जाने से सारा घर आंगन चहका है। यह हम डेडिकेट करते हैं कानात सा को। थैंक यू सो वेरी मच For your love, for your star.

ओके जी, बहुत लंबे अरसे बाद हमारी आमद हुई, बट वी आर गोइंग। और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज बात हुई ओल्ड इज गोल्ड के ऊपर, मौसम के ऊपर। हमने आज आपके साथ बहुत जिसे कहते हैं पीक किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी फैलाइएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हम आप लोगों के साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप हमारा वेट कीजिएगा। आई विल बी राइट हियर। अब सांसों ने इजाजत दी, जिंदगी ने मोहलत दी थी, तो ही हाजिर होंगे ना इंशाल्लाह आपके साथ। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत माफी, और जी एक दूसरे से माजरत माफी मांगते रहा करें, और अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। पुरानी चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं। मान लिया कि यंग जनरेशन आ गई है, लेकिन मेरी तमाम यंग जनरेशन को यही मैसेज है कि अपनी जवानी में ये मत समझें कि जी आपके साथ जो पहलू में बैठे लोग हैं या चल रहे हैं या आपके साथ घर के रह रहे हैं, वो पुराने, उन्हें कुछ पता नहीं। दे नो एवरीथिंग।

इनको यही मैसेज है कि अपनी जवानी में ये मत समझें कि जी आपके साथ जो पहलू में बैठे लोग हैं या चल रहे हैं या आपके साथ घर के रह रहे हैं वो पुराने, उन्हें कुछ पता नहीं. दे नो एवरीथिंग. उन्होंने सफेद बाल, वो कहते हैं ना, पुत्र असी वाल सफेद तो पच नहीं कीते, बल्कि उम्र में हर चीज ऊंच नीच देख के किए हैं. तो प्लीज रिस्पेक्ट योर एल्डर, और कहीं पर भी हों उनकी इज्जत करें. इज्जत करने से, बाअदब होने से बहुत कुछ मिल जाता है. ये फैज है जो कि बाअदब होने से मिलता है मेरे ख्याल में, और हमें भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक मुझे भी बाअदब बना, बाअदब बामुराद. सांसों ने इजाजत दी, जिंदगी ने मोहलत दी. आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ, अल्लाह हाफिज. और अपने रिस्क को इस कदर वसी कीजिए, उसमें शामिल कीजिए उन लोगों को जो के आपके खाने में शामिल हो सकते हैं. शोरबा लंबा कर लीजिए, अलमारियां भर के ना रखें, जूते कपड़े कुछ भी व्हाट्सो एवर जो भी आप दे सकते हैं दे दीजिए. 10 रुपए भी दे सकते हैं दे दीजिए, तकसीम कर दीजिए. सांसों ने इजाजत दी, जिंदगी ने मौला दी. आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, चाओ चाओ. आरजे शहजाद इज गोइंग टू साइनिंग आउट.

0: The Big Bear 100.
1: Smooth FM 100.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: and
4: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire
5: One, two, three, everybody come with me.
6: This is FM 100.
5: Around the world.
7: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
8: FM.
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: अज़ान ए ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो गया है।

Allah.

0: Around the world.
1: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
2: It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
3: पाकिस्तान में बढ़ से फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है. रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं. इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है. आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है. पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके. आपको व्हाट्सएप या किसी वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे. बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है. लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं. बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है. याद रखे, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता. न व्हाट्सएप खुद मांगता है, न कोई अदारा और न कोई दोस्त. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए. अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें. साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें. अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था. व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा. ये कोड दर्ज करें. ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है. अगर तस्दीकी कोड न आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें. 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर. इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें: सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल. अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो. सिम कार्ड सबसे अहम है. इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं. राब्तों को फौरी इतला दें. अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें: मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें. इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं. अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है. 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉल करें. सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो. ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें. ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है. अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं. तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो. कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है. जाली लिंक्स और ऑफर से बचें. मुफ्त इंटरनेट, इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें. ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें. व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें. सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें. फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें. अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा. पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें. याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं, बल्कि ज्यादा तर इंसानी गलती की वजह से होती है. थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं.
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: एंड
7: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
8: We play

0: सेल्फियां, अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.

0: discover for yourself a better music variety.
1: One world,
2: one radio.
1: FM 100.
3: Cool King.
4: रिद्धि का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
7: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
8: This program is brought to you by
9: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, just simile maximum cooling or energy saving, no frost, no worries.
8: And
10: Hire T3 AC Expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: एंड
4: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: वी प्ले ऑल द हिट।

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: कूल किंग
5: चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
8: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333-555-0001।
9: This program is brought to you by
10: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
9: And
11: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire

mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct, this is

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
1: and
3: Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher
4: Talk is off
5: Music is on

and every night on Music FM. This is the Music FM. 100.

0: नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: एंड
2: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
3: दिस इज योर म्यूजिक.

0: हाय रे मेरी सेल्फियां, अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां।
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.

0: 101FM, your location for maximum music.
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: This program is brought to you by
2: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
3: Welcome back after the itchy bitchy break on 100 FM

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: Tax Pay करना अब हुआ आसान अभी Jazz Cash App डाउनलोड करें और अपना Tax Pay करके Lucky Draw में शामिल हो जाएं और जीतें Electric Scooter आसान Payments और Exciting Rewards के लिए Jazz Cash है ना
3: Cool King चाय होटल में बैठे हो चाय गरम मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट सबका टेम्परेचर हाई लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश

अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: कूल किंग।
2: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
3: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
1: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को

0: यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए राब्ता 0333-555-0001।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: Turn up the power on FM 100.

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Non-stop music. You're in tune to the big sound in Pakistan. FM 100. This is your music.

नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर डाले। 100.1 FM, your location for maximum music.

0: station for maximum music.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: कूल किंग। चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: Plays the best music ever.

0: No need for camera light connection. Just listen and feel the heartbeat of Pakistan.
1: Cool King.
2: अबे देख के नहीं चलाता
3: क्या? बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
1: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे

100. 100 FM. Your location for maximum music.

0: location for maximum music.
1: माजी के सुरों से यादों की शमा जलाएं, यादों की शमा जलाएं. Golden Classic on FM